0: ये है लाइका रेडियो, भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 01163325100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
3: Wake up to Kajal every weekday morning on Breakfast. Like a radio.

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वड़ियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नाद अनाहत जुग जुग एकोवेश, आसन लोय लोय भंडार, जो कुछ पाया सो एकावार, कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच

0: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: Breakfast with Deep Raja.
2: Easing you into your Sunday morning. Good morning, this is Deep Raja.

0: वाली मेम साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: भैया
1: इसकी चाल तो देखो,
0: अरे रंग लगाया
1: इसके बाल तो देखो,
0: अरे झूठे मूठे
1: इसके दांत तो देखो।

0: Mapster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mapster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट पे किया
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Punjab, the biggest tunes.

0: लीजिए, इन्होंने कहा कि जब तक रहे तन में जिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप ये वादा करें कि जब तक रहे कानों में सुनने की क्षमता, आप हमारे लिए और हमें ही सुनते रहे। इस तरह का वादा मैं भी आपसे चाहती हूँ, लेकिन वादे की जरूरत नहीं है। आप सब ऑलरेडी मेरा साथ देते हैं, ये मैं जानती हूँ। ये आपके मैसेजेस बताते हैं और ये बातें आप खुद बताते हैं जब आपसे मुलाकात होती है। तो कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम में एक बार फिर से हम सब हंस कर मिलकर अच्छी अच्छी बातें कर आगे बढ़ेंगे। आप मेरा साथ दे रहे हैं मैं जानती हूँ, और सभी सुनने वालों को ये बताती चलूं कि ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा हूँ, और जहां जहां तक भी मेरी आवाज जाती है, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। दो बैक टू बैक गाने आप सुन चुके हैं। पहला गीत आशा भोसले की आवाज में समाधि फिल्म से था, और दूसरा गीत भी आशा जी की आवाज में था, और साथ दे रहे थे अमिताभ बच्चन। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, जब तक रहे तन में जिया, और दो लफ्जों की है दिल की कहानी। ऐसे गाने सुनवाती रहूंगी, आप साथ देते रहिए। और प्रोग्राम में आज आप जोड़ी नंबर वन सुनते हैं ना, तो बताऊंगी कि आज की जोड़ी नंबर वन कौन सी है, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
1: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो लीजिए, फीफा 2026 वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कल इंग्लैंड ने थर्ड पोजीशन के लिए मैच जीत लिया, और कल होगा फाइनल संडे को, जो है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में। लेकिन आप 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये सब हो सकता है जब आप उन्हें मेंशन करेंगे क्या, लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और फीमेल सिंगर मयूरी पटारिया। संडे 27th ऑफ सितंबर, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें dmontforthall.co.uk
4: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 07860-280-655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
5: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफटाइम? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90 सॉन्ग्स नॉन स्टॉप

खूबसूरत गाना, खूबसूरत आवाज, अभिजीत भट्टाचार्य। तभी तो जब उनका शो देखने गई थी तो मुझे बहुत मजा आया था, क्योंकि उनके गाने बहुत ही अच्छे हैं और उनकी आवाज में जो पावर है उसे सुनकर बस मजा ही आ गया था। जब भी उनकी आवाज में ये गीत सुनती हूँ तो वो शो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। बागी फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें ये शानदार म्यूजिक था आनंद मिलिंद का, और 90s के बहुत खूबसूरत गीत इन्होंने बनाए हैं आनंद मिलिंद। और हमारे गिरीश जी कहते हैं कि गाना बहुत सुंदर है लेकिन फिल्म में नहीं था। तो गिरीश जी, मुझे लगता है कि ये गाना फिल्म में था। मैंने ये फिल्म देखी है और इस फिल्म में बहुत लड़ाई, मार काट, और वो जो अमरीश कौन सा था, वो क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो विलन बने थे, क्या नाम था उनका, मेरे दिमाग से निकल गया है। उन्होंने ऐसी खतरनाक वाली एक्टिंग की थी ना कि बस मैं बता नहीं सकती। आप

0: में से किसी को नाम याद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वो मेरे मुंह पर है लेकिन निकल नहीं रहा है, सदाशिव अमरापुरकर। ओ यस यस, सदाशिव अमरापुरकर शायद उनका नाम था, और क्या खतरनाक वाली एक्टिंग उन्होंने की थी। एनीवेज, ये गाना जिन जिनको पसंद है उन सभी के नाम पर करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है आप सभी के मैसेजेस पर एक नजर डालने का।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Laika Radio. बिल्कुल सही सुना आपने, ये आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क ही है। एक बार फिर से याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर मैं रितु शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और आप सभी को गुड मॉर्निंग। ढेरों ढेरों मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू संध्या बाबसर जी, आज आपका ही नाम सबसे पहले लेते हैं, नहीं तो आप बहुत लंबे लंबे आंसू बहाती हैं। स्वागत है आपका। जैनुद्दीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, और आज बड़े दिनों बाद मीना लखानी जी आपका मैसेज आया है और जानकर अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और बस यही कहूंगी खुश रहा कीजिए, जिंदगी में चिंताएं परेशानी तो सबके आती हैं लेकिन हमें अपने लिए भी तो जीना है, इसलिए उन चिंता परेशानियों को एक तरफ करके खुश हो जाए कीजिए। जब भी परेशान हो तो अपने दिल से ये कहा कीजिए, नहीं नहीं नहीं मुझे परेशान नहीं रहना है, मुझे खुश रहना है, और उस समय वो काम करना शुरू कर दीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, है ना सिंपल। चलिए खुश रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए। सुरजीत जी स्लाव में सुन रहे हैं, तृप्ति हैं हमारे साथ, हिमांशु पटेल जी स्वागत है, नरेंद्र भागिया जी आपने भी आज चार लाइनें हमारे साथ शेयर की है, और आपने लिखा है कि सागर में गहराई होती है, यादों में तन्हाई होती है, इस बिजी लाइफ में कौन किसको याद करता है, अगर कोई करता है तो उसकी याद में सच्चाई होती है, जैसे हम आपको करते हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही लिखा, आप हमेशा ही हमें याद करते हैं और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू परविंदर मथारू कहती हैं, शुरू के दो गाने सुनवाकर मजा बांध दिया, क्या बात है। गीता हर्षद जोशी जी बहुत धन्यवाद। शब्बीर जी आज बड़े दिनों बाद आप भी प्रोग्राम में आए हैं, और आपने भी हमेशा की तरह आज दो लाइनें हमारे साथ शेयर की हैं, और आप लिखते हैं कि बड़े अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे पर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं, क्या बात है। आप हमेशा ही बहुत खूबसूरत लाइंस हमारे साथ शेयर करते हैं, स्वागत है आपका इस शो में, और बड़े दिनों बाद मैसेज करने के लिए आपका धन्यवाद। शेखर जी सतरंगी प्रोग्राम सुनने के लिए बेकरार हैं, तो बस शुरू हो गया है, आधा घंटा बीत भी गया है, थैंक यू सहर जी, थैंक यू नंदा प्रवीण बेल्जियम से, प्रीति जी, हंसा जी, मृदु जी एंड ऑफकोर्स राजकुमार जी, आपको हमारी राम राम। ये है हमारे हरीश खत्री जी, और साथ में है अनिल सोनी जी, कहते हैं कल बहुत बिजी था तो रेडियो सुनना भूल गया, क्या बात करते हैं अनिल सोनी जी, कैसे आप रेडियो सुनना भूल गए, मैं इतनी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे गाने लेकर आती हूँ और आप रेडियो सुनना भूल जाते हैं, आप अलार्म क्यों नहीं लगाते हैं, अलार्म लगाइए, सेट कीजिए कि 10 बजे रितु शर्मा शो सुनना है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जो भूल जाते हैं उनके लिए ये सजेशन है, ताकि फिर आप मुझे ये ना कहे कि हम आपको सुनना भूल गए। एनीवेज सभी का स्वागत है, सभी का धन्यवाद, और आपने इतनी अच्छी अच्छी लाइनें मेरे साथ शेयर की हैं, तो चार लाइनें मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स,
0: और वो ये कि दो लफ्जों में सिमटी है ये कायनात, दो लफ्जों में सिमटी है ये कायनात, एक तेरा जिक्र एक मेरी अधूरी बात, धड़कने गाती हैं बस तेरा ही तराना, बिना तेरे हर लम्हा जैसे एक रात। ये जो लाइनें हैं ये मेरी ओर से आपके लिए, और अगला गाना भी मेरी ओर से आप सबके लिए है।

0: लीजिए रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में एसडी बर्मन की म्यूजिक पर ये गाना था बॉम्बे का बाबू फिल्म से। और ऐसा ही एक और गाना सुनवाने वाली हूँ जो 60s की ही फिल्म का है और जिस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत डांस किया था उस जमाने की जाने मानी हीरोइन जो एक बहुत ही खूबसूरत डांसर भी थी वैजयंती माला ने। तो आप भी उस गाने के साथ थिरकने के लिए जरा तैयार हो जाइए। सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: ये है Leica Radio. Leica Radio. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: तो अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो दुबई चले जाइए। साउथ हॉल ट्रेवल के पास बहुत अच्छी डील्स चल रही है। उन्हें फोन कीजिए 0208 574 8410 पर और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।

0: इस म्यूजिक को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये नौशाद जी के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सिग्नेचर स्टाइल है गाने के बाद काफी लंबा म्यूजिक उन्होंने दिया है गाने में, और इस गाने में थिरकी हैं वैजयंती माला। जैस्मीन जी कहती है इस गाने को सुनकर मजा आ गया। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू दिनेश पोपट जी, स्वागत है आपका। एंड थैंक यू है ना जासू जी हमारे साथ जुड़ गई है, एंड ऑफकोर्स हमारे राजेश जी आपका स्वागत है, एंड अरुणा जी। आप सबने गीत को पसंद किया है और इस गाने में क्या मिठास थी, और यही तो खूबी है पुराने गीतों की। और ऐसे ही पुराने गाने आप सुनते हैं प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स हमारे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक फीचर में। लेकिन सेकंड वाले आवर में होती है जोड़ी नंबर वन, और आज की हमारी जोड़ी है अमिताभ बच्चन और राखी की जोड़ी। इनके गाने सुनवाऊंगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले बताऊंगी आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: The gold rate is 95.97 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica. Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers one. From 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN. Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
6: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
7: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
6: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15. Make sure you book before the clock strikes midnight.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
11: Okay, help's on its way.
12: Grab my hand!
10: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
13: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
14: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
15: Hey, boy!
16: Coast Guard, we're stuck.
11: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
17: Shoes, tide, phone.
18: Back before dark, love. Okay.
13: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite Sharma show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: ब्यूटीफुल गाना लता जी की आवाज में, एस डी बर्मन का म्यूजिक और हमारे साथियों का कहना है व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू मोहम्मद अय्यूब जहान जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और भारती दीदी धन्यवाद आपका, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ज्योति जी आपका मैसेज आया है और आपने बताया है कि आज आप अपने हस्बैंड को विश करना चाहती हैं, आज आपकी 45th वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत बहुत बधाइयां आप दोनों को। और जीवन के अप्स एंड डाउन्स में आप दोनों साथ मिलकर जिए हैं, हंसे हैं, दुख के दिन भी बिताए हैं, और बस यही चाहूंगी कि ये साथ आपका हमेशा हमेशा यूं ही प्यार के साथ चलता रहे। दोनों को आज की एनिवर्सरी की, आपके एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयां। इसके अलावा जयश्री जी थैंक यू, ये गाना आपका फेवरेट है, चलिए मैंने आपको नाम किया, आपके नाम किया। और कैंट में सलमा जी काम करते करते रेडियो सुन रही है, पूरन कपूर जी जर्मनी में हमारे साथ है, मालती जी स्वागत है आप सबका भी इस प्रोग्राम में। सेकंड आवर चल रहा है और इस आवर में मैं आपको जोड़ी नंबर वन सुनवाती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पीछे की ओर, यानी कि हम इतिहास के पन्नों को आज फिर से खोलने वाले हैं, क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है। आज 19th जुलाई है और आज के दिन भारत के इतिहास के एक बेहद महान हस्ती का जन्मदिन है। आपने नाम सुना होगा, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की जो क्रांति आई थी उसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, सुना है। और उस क्रांति के महानायक जानते हैं कौन थे? अमर शहीद वीर मंगल पांडे, जिनका आज ही जन्म हुआ था। तो सोचा क्यों ना आज उन्हें याद किया जाए, उनके बारे में कुछ बातें आपको बताई जाए। भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके सबसे बड़े महानायक मंगल पांडे ही थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक कर देश में आजादी की पहली बड़ी चिंगारी सुलगाई थी। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें आमिर खान ने काम किया था और फिल्म बहुत ही अच्छी बनी थी। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताती चलूं कि उनका जन्म आज ही के दिन 1827 में यूपी के बलिया जिले में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, नाम से ही पता चलता है मंगल पांडे। और वो अपने जीवन में बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एक सिपाही के रूप में उनकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी में उनकी भर्ती हुई, उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल की छावनी में हुई। और जानते हैं विद्रोह का कारण क्या था? उस जमाने में ब्रिटिश सेना ने एक नई एनफील्ड राइफल शामिल की थी और इस राइफल के जो कारतूस थे उनको मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ये खबर फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और तभी मंगल पांडे ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। और जब अंग्रेज अधिकारी जो उस समय के थे मेजर हुसैन, उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो मंगल पांडे ने अपनी राइफल से उस पर गोली चला दी और इसके बाद उन्होंने एक और अंग्रेज अधिकारी को भी ढेर कर दिया। और इन सब ने, इस कार्रवाई ने देशवासियों में जोश भरा और उन्होंने एक नारा दिया कि मारो फरंगियों को, क्योंकि उस समय तक भारतवासी उनके जुल्मों से बहुत परेशान हो चुके थे। और आखिर में इस कृत्य के लिए, इस कार्य के लिए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, उनका कोर्ट मार्शल किया और 8 अप्रैल 1857 को तय तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि छोटी सी उम्र में ही मंगल पांडे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हो गए। और उनके इस बलिदान ने उस समय देश में विद्रोह की आग लगा दी और तब पहली बार सुलगी 1857 की महान क्रांति, जो आगे चलकर काफी बड़ी हुई और लोगों को लग रहा था कि उस समय ही भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ हुआ, वो जो हिस्ट्री पढ़े हुए उन्हें पता होगा कि किस तरह से इस क्रांति को दबाया गया, लेकिन एक बार जो आग फूट गई वो रुकने वाली कहाँ थी। 1947 में आखिरकार भारत आजाद ही हुआ। लेकिन इस पर बहुत सुंदर फिल्म बनी है मंगल पांडे, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और आमिर खान की फिल्में ज्यादातर अच्छी ही होती हैं और इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आज जब मुझे पता चला कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो क्यों ना ऐसे महान कलाकारों को याद किया जाए, इसलिए आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने उनके बारे में आपके साथ शेयर की। और अब समय है आज की जोड़ी नंबर वन की शुरुआत करने का। और आप जानते हैं हमारी आज की जोड़ी है कौन सी, अमिताभ बच्चन और राखी की जोड़ी। अब देखते हैं कि आज मैंने कौन से गाने चुने हैं बजाने के लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.9 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज तो कोई मैच नहीं है, लेकिन कल फाइनल मैच खेला जाएगा स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप अपनी 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये होगा जब आप उन्हें कहेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sill, Leicester, LE5 4UN.
4: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
5: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gama Pa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
6: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
7: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
6: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
5: Lester Miller is back.
8: And the stage is about to explode. Confirmed artist
5: H Dami. Bringing the hits, the energy, and those proper live stage vibes.
8: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
8: Arts Council England.

जैसे किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में कस्मे वाली फिल्म से था ये गाना हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। और यस आज ही तो फाइनल मैच है, पता नहीं मुझे लगा कि कल है, संडे तो आज ही है। यस आज ही है फाइनल मैच और आप सभी को इंतजार है कि देखें कौन जीतेगा ये फीफा 2026 वर्ल्ड कप। और अब हम

0: टेंशन फ्री होकर भी देख पाएंगे क्योंकि इंग्लैंड की टीम नहीं खेल रही है। सो, शाम को क्या होता है वो तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये गाना कस्मे वादे फिल्म से लिया था और जिसमें म्यूजिक था आजी बर्मन का, अमिताभ बच्चन और राखी की। एक ऐसी फिल्म जो बहुत ज्यादा उस जमाने में नहीं चली थी, लेकिन गाने तब भी पसंद किए गए थे और गाने आज भी सबको पसंद आते हैं।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अब सुनवाते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: बिल्कुल किशोर दा की आवाज में हमारे आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर, और हमारे बहुत सारे साथी ने याद दिलाया कि ऋतु मैच आज ही है। जी हाँ, बिल्कुल आज ही है, लेकिन वो तो मैं कभी कभी ऐसे कह देती हूँ ये जानने के लिए कि आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। लेकिन आप सब ध्यान से सुन रहे हैं और आप सबने मुझे बताया है कि ऋतु आज संडे है। जी हाँ, आज संडे है और मैच बिल्कुल आज ही है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और आभा शर्मा, आप कहती हैं मैं आपको तो इंडिया नहीं ला पाई, लेकिन आवाज को आपकी इंदौर लेकर आई हूँ। मैं इंडिया में आपको सुन रही हूँ। क्या बात है आभा, मुझे भी ले चलती ना, मुझे भी इंडिया गए हुए कितने महीने हो गए और मैं बहुत जल्द जाने का प्लान बना रही हूँ, अभी चली जाती आपके साथ। लेकिन आप इंदौर में सुन रही हैं, थैंक यू। और इंदौर मेरे ग्वालियर से बहुत पास है, मतलब वैसे तो पास नहीं है लेकिन एक ही स्टेट में आता है, तो मुझे खुशबू आ रही है वहां से अपने स्टेट की, अपने उसकी। एनीवेज, मजे के साथ अच्छा सा टाइम बिताइए भारत में, और थैंक यू इस मैसेज के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई आज लाइका रेडियो नेटवर्क की टीम पहुंची है रथ यात्रा में, एनुअल रथ यात्रा जो आज ही है संडे को 19 जुलाई को। और आपको बता दें कि ये शुरू हो गई है आई थिंक, क्योंकि अभी तो 11 बज रहे हैं, SKSST कैंटन हैरो टेम्पल से, और खत्म होगी श्री स्वामी नारायण टेम्पल स्टैनमोर में। और जहां पर जो भक्त गण जाएंगे उन्हें भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का भी मौका मिलेगा, और ये सब हो जाएगा हैरो और ब्रेंड की स्ट्रीट से होता हुआ। लाइव अपडेट्स के लिए रवि शर्मा, सरिता सबरवाल वहां पर होंगे लाइक अ रेडियो लाइक अ गोल से, और हम अगले घंटे में उनसे आपकी बात भी कराएंगे, बताएंगे भी कि वहां कैसा क्या माहौल है। आप भी जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, और अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए sksst.org पर।
1: This is Ritu Sharma. Leica Radio. Leica Extra Podcast Update.
0: तो भाई Leica Extra का नया पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है, और इसका टाइटल है Leica Presenters Takeover. और आप Leica Extra पॉडकास्ट सुन सकते हैं Spotify पर, YouTube पर, Amazon पर, Apple पर, और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाकर।
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: ये है
1: Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.

0: लीजिए जोड़ी नंबर वन में मैं नॉर्मली दो ही गाने सुनवाती हूँ, लेकिन हमारे कुछ साथी इस गीत को सुनना चाहते थे, इसलिए आज इस गीत को भी जोड़ी नंबर वन में शामिल किया। थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी। ये गाना कहते हैं आपने बजाकर मेरा दिन बना दिया, और हमारे जैनुद्दीन जी कहते हैं कि व्हाट अ लवली सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो चलिए ये गाना हमने आपके भी नाम पर किया। और गिरीश जी कहते हैं कि मैं इंदौर से हूँ, जब ग्वालियर आए तो इंदौर जरूर आइए। तो इंदौर मुझे जाना है ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर देखने के लिए, तो इंदौर तो आना होगा, लेकिन इस बार या अगली बार या कब पता नहीं, लेकिन जब आऊंगी तो बताऊंगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: The gold rate is £95 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. LEICA Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, Payback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, LEICA Radio.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग।
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल एट Protected.
8: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwala,
9: nazar se nazar.
8: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, LEICA Radio Network.
10: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
16: ये है लाइका गोल्ड

मस्तानी ओ जानी जरा नजरें मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा

0: चटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय।
1: यस, रफी साहब की आवाज में सावन भादो फिल्म से था ये गाना और उससे पहले हम किसी से कम नहीं में किशोर दा और आशा भोसले की आवाजें आपने सुनी। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है और इस आवर में मैं आपको सुनवाती हूँ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स और हम खेलते हैं अपना थ्री वर्ड्स गेम भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे और ये है माता पिता जो पेरेंट्स है उनके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन। अपने बच्चों को सर्वोत्तम संभव शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उनका बचपन का जो टीकाकरण है वो समय पर पूरा हो। टीके खसरा और काली खांसी जो वूपिंग कफ है जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदाय में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वे सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीकाकरण हर साल 5,000 से अधिक मौतों को रोकने में मदद करते हैं और ये जानना आपके लिए मददगार हो सकता है कि NHS द्वारा दिए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से दिए जा चुके हैं। सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण टीके हैं। सही, ये महत्वपूर्ण बात है कि आप इन्हें सही समय पर दिए जाएं। लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो आप उसे लगवाने के लिए अपने GP से संपर्क कर सकते हैं और आपके बच्चे के टीके की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको रेड बुक में जाके मिलेगी या फिर आप GP प्रैक्टिस से बात करें और पता लगाएं कि आपके बच्चे के सारे टीके लगे हैं या नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर जाइए।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128.9 भारतीय रुपए और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम की। आज के तीन वर्ड्स जो हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, हमेशा ही हम आज के जो तीन वर्ड्स हैं वो एक बॉलीवुड के गाने से लेते हैं और आपको उन वर्ड्स की मदद से गीत पहचानना होता है। तो पहला वर्ड है जमी, दूसरा वर्ड है आसमां और तीसरा है मेहरबा। 1966 की फिल्म है, रफी साहब की आवाज है और RD बर्मन का म्यूजिक है। बताइए कौन सा है ये गाना। पहला वर्ड है जमी, दूसरा वर्ड है आसमां, तीसरा वर्ड है मेहरबा। 1966 की फिल्म है, RD बर्मन का म्यूजिक है और रफी साहब की आवाज है। अगर आपको पता है कि ये गाना कौन सा है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस नंबर पर।
2: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. from worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybourne Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-396-35757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.

0: हेलो जी हाँ, ये था बहुत ही खूबसूरत गाना जिसे हमने लिया था फिल्म खानदान से। और आप जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर रवि। और अब हमारे साथ रवि शर्मा जी जुड़ चुके हैं, रथ यात्रा चल रही है तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो रवि जी। हेलो रवि जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो रवि जी, हेलो, लीजिए हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, हम दोबारा आपसे उनकी बात करवाएंगे।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लीजिए लता जी के आवाज में था ये आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और आप में से बहुत सारे साथियों ने आज हमारे थ्री वर्ड्स गेम को सही सही पहचान लिया और इतने आंसर मिले हैं कि फिलहाल तो मुझे आप सबके आंसर्स देखने का टाइम भी नहीं मिला है, तो मैं देखती हूँ आज चेक कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गाना जरूर सुनवाने वाली हूँ आपको। लेकिन उससे पहले याद दिला दें हम आपको कि अगर आप हॉलिडे जाना चाहते हैं तो आप दुबई जा सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं 0208-574-8410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
2: White Hill Studios पेश करते हैं period action thriller The Star.
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: Starring Tarsem Jasser, Geet Ghoraya, ते Yograj Singh.
4: They have slavery in their blood. We have kingship in ours.
5: Create terror.
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
6: एक सिंह दा पुत्तर दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: The Janan and J.Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J.Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.

0: What a beautiful song. आप में से ज्यादातर साथियों ने सही पहचाना आज के गाने को। गीता एंड हर्षा जोशी जी, वत्सला जी, अयुब चौहान, तोची पनेसर, नीलखंड, रानी सोहानी, कुकी, करसन वेंडोरिया, गिरीश जी, सहर जी, अजिंक्या, अमित पटेल, कुकी, वत्सला, नरेन पटेल जी, उल्लास, दिनेश पोपट जी, विनोद जी, यास्मीन जी एंड केशव जी, सभी का आंसर बिल्कुल सही था।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 95.9 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
3: Yeah. Leica Radio.
0: चलिए समय आ गया है आप सभी से बाय-बाय कहने का। अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार आपका साथ देंगे गोल पर अनुराग। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी आपके साथ फजीला एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आपके साथ आनंदी। मेरी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी सैटरडे के दिन। मौसम अच्छा है, एंजॉय कीजिए। और आपको बता दें कि इस शो को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर सुन सकते हैं। अगर आप नॉनस्टॉप क्लासिक सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका गोल्ड 2 ऑनलाइन। पंजाबी गीतों के शौकीन है तो लाइका रेडियो पंजाबी। और 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो बैक टू बैक 90s लाइका रेडियो 90s ऑनलाइन जाकर सुन सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच शो में मेरा साथ देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: ये है Leica Radio.
5: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Heera Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela और लॉन्ग दूधी 299 पर किलो। ऑफर्स वैलिड फ्रॉम 6th जुलाई टू 2nd अगस्त एट फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
6: Leicester Miller is back.
7: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
6: Confirmed artists include Lemban Hussein Puri, H. Thami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
7: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट jobs.

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, है जो सीने में

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
1: नेक्स्ट सरिता साबोवाल विद गोल्डन मेमोरीज ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। 90s throwback plays now. Like-

0: गुड आफ्टरनून, बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। ये गीत था ये वादा रहा, फिल्म से 1982 की फिल्म थी। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया मैंने 1942 अ लव स्टोरी के बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। वैसे उस फिल्म के सारे गाने ही ज़बरदस्त, लेकिन एक गीत चुनना मुश्किल था, पर मैंने चुन लिया ये वाला गीत। और मुझे मालूम है कि हो सकता है आपको भी पता चल चुका है इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म को 32 इयर्स हो गए रिलीज़ हुए। 15th ऑफ जुलाई को ये रिलीज़ हुई थी एंड 1942 अ लव स्टोरी रिटर्न इन 8K। अनिल कपूर, मनीषा कोइराला सेलिब्रेटेड 32 इयर्स टुगेदर वी आर वेल इस फिल्म के साथ। और अनिल कपूर, मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में काम किया था। दे ऑल गॉट इमोशनल एज 1942 अ लव स्टोरी सेट फॉर बिग स्क्रीन रिटर्न आफ्टर 3 decades। एंड विदु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, बनाया था, एक्लेम्ड रोमांटिक ड्रामा 1942 अ लव स्टोरी हैज कम्प्लीटेड 32 ईयर्स सिंस इट्स रिलीज विद द फिल्म्स लीड कास्ट मेकिंग द ओकेजन थरो हार्टफेल्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर ही अनिल कपूर ने लिखा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। ही रोट 32 ईयर्स लेटर एंड दिस फिल्म स्टिल फील्स एज क्लोज टू माई हार्ट एज इट डिड ऑन वन डे वन। एंड वी मेड दिस फिल्म विद ऑनेस्टी, पैशन एंड सो मच लव। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस न्यू दैट डेकेड्स लेटर इट वुड स्टिल बी रिमेंबर्ड विद द सेम अफेक्शन। A timeless tale of love, hope, sacrifice, patriotism, and it continues to live on across generations. Today, I'm deeply moved to see this classic lovingly restored in 8K with a sound. बहुत डोल्बी में इसे दोबारा से लाया गया है एंड डोल्बी 5.1 में, एंड ब्रिंगिंग एवरी इमोशन, एवरी नोट, एवरी मेमोरी बैक टू लाइफ। ये अनिल कपूर का कहना, ऐसा ही कुछ मनीषा कोइराला ने कहा और ऐसा ही कुछ लिखा जैकी श्रॉफ ने। तो हमें भी बहुत खुशी है कि 30 साल बाद भी ये फिल्म इतनी पसंद की जाती है। आपने 1942 अ लव स्टोरी देखी? अगर देखी तो जब रिलीज़ हुई थी फर्स्ट तभी देखी थी या फिर बाद में देखी थी? आपको ये फिल्म कैसी लगी थी? मनीषा कोइराला, आई थिंक शी लुक्ड रियली ब्यूटीफुल इन दिस फिल्म। सभी का काम बहुत अच्छा था, चाहे वो अनिल कपूर थे, जैकी श्रॉफ थे, अनुपम खेर भी थे इस फिल्म का हिस्सा, जिसने भी काम किया बहुत अच्छा था। एक मुझे रंश हमेशा रहा कि आर डी बर्मन साहब का इतना अच्छा वक्त नहीं चल रहा था उस वक्त, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई और ये फिल्म रिलीज़ हुई, इसके गीत रिलीज़ हुए, तो सारे के सारे गीतों को इतना प्यार मिला, बहुत पसंद किए गए। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई थी, बेस्ट डायरेक्टर के लिए विदु विनोद चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया, बेस्ट एक्टर अनिल कपूर, मनीषा कोइराला सबका नाम हुआ था नॉमिनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में जैकी श्रॉफ को अवार्ड मिला था, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का आर डी बर्मन साहब को अवार्ड मिला था, बेस्ट लिरिसिस्ट का जावेद अख्तर साहब को फॉर एक लड़की को देख का, देन फीमेल प्लेबैक सिंगर में कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति जी को हुआ फॉर दिस सॉन्ग विच आई प्लेड जस्ट नाउ, एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे इस फिल्म को। मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को ज़रूर इंजॉय किया। अरे भी फिल्मों की बातें करने लगी सरिता, ये भी नहीं पूछा कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए। ये गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी आज ब्रिटिश स्टर्लिंग वन पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128 रुपीस एंड 90 पैसा। डोंट फॉरगेट, आप एक्सचेंज करा सकते हैं ब्रांच में जाके ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: राइट भी कल का मैच तो इंटरेस्टिंग था. देखा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मैच था. 6-4 से इंग्लैंड जीते और तीसरे नंबर पर प्लेस में आगे फाइनल्स में. एंड आज बिग बिग बिग डे है. फाइनल यस रात को 8 बजे शुरू होने वाला है. यस 8 बजे शुरू का मैच स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में मैच है. आप जिसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी टीम को आगे बढ़ने का मौका मिले और विजय हो. और यहाँ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स. कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk.
0: भी गीतों में कुछ कॉमन है. एक शब्द है जो दोनों गीतों में आपको सुनने को मिला और अगर आपको पता चल गया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन सा वर्ड है. और अगर उस वर्ड पर कोई गाना भी याद आ रहा है तो भी बता दीजिए. हो सकता है आपकी पसंद को सरिता शामिल कर ले आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में.
1: सरिता समरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: भी गीत पसंद किया। राइट, मेरे साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोशनी जी ने लिखा है कि सरिता जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब बताइए कि मैं कहाँ मिली। आज मैं गई थी कहाँ, रथ यात्रा में, और आपने शायद लाइका रेडियो पर आवाज़ भी सुनी होगी। लाइका रेडियो के साथ मिलकर रथ यात्रा का आयोजन किया था स्वामीनारायण मंदिर वालों ने, SKSS स्वामीनारायण मंदिर, और हैरो से प्रोसेशन चला था स्टैंड मोड़ तक। अब तो फिनिश हो गया होगा और हमारे साथी वापस भी आ रहे होंगे, लेकिन हज़ारों हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, पूजा की गई एंड भगवान श्री भगवान जगन्नाथ जी के रथ को चलाया, हमने भी चलाया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और जिस जिस ने भी आकर कहा ओ सरिता जी आपको देख के खुशी हुई, तो मुझे आपसे भी ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे काम को आप सराहते हैं। रोशनी जी थैंक यू आपका बहुत बहुत, और भी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, अब सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन थैंक यू एवर सो मच कि अब मेरे पास आने के लिए और अपनी पहचान गिराने के लिए, थैंक यू।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राइट भी, ये गाना डेरी वैली वालों ने आप तक पहुंचाया था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और बीच में मैं सरिता बात करने लगी तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये गाना उनकी तरफ से था जो आप सबके लिए प्ले हुआ था। और अब कोका नूडल्स वालों वाला गाना तो बहुत प्यारा है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद
1: आएगा। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: अभी भी मौका है, जल्दी से बताइए कौन सा वर्ड हर गीत में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे।

0: वन ऑफ माय फेवरेट्स. उम्मीद करती हूँ आपने भी पसंद किया इस गीत को. मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा भोसले जी की आवाज़ है. मेरे साथियों ने अभी तक पहचाना नहीं है. कोई कह रहा है दिल कॉमन है, कोई कहते हैं दीवाना कॉमन है. ऐसा कुछ नहीं. पहला गीत था प्यार हुआ चुपके से, दूसरा गीत था ऐसा कभी हुआ नहीं, और तीसरा गीत था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और चौथा गीत था दीवाना हुआ बादल. अब तो जान गए ना कि क्या कॉमन है. जल्दी से बता दीजिए.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: This is Leica Radio across the Midlands. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
0: और ये कह रहे हैं आपसे प्यार हुआ. फिल्म का नाम है आबरू. 1968 की फिल्म. शशि कपूर थे इस फिल्म के हीरो.
3: आप

0: भाई मेरे साथ ही अपनी अपनी एक्सपीरियंस भी लिखते हैं, जैसे कि अनिल जी ने लिखा कि इस गीत ने मुझे याद दिलाई मेरे फ्रेंड सुभाष पटनी की। तो मैं हमेशा पूछती हूँ आपसे कि कोई याद हो, जुड़ी हो इन गीतों के साथ, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और समीना जी, आप मैनचेस्टर में सुन रही हैं प्रोग्राम, खूब इंजॉय कर रही हैं ये जानकर बहुत अच्छा लगा। रोशनी जी, सलमा जी, संध्या जी एंड प्रज्ञा जी, प्रुथा जी, अरुणा रानी जी इंसलाव एंड अर्जुन जी, निशा, संतोष इन हैरो, अनिल जी, निर्मल एंड किरत जी, देन दिव्या इन हैरो, इंतजाव, जगतार जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं जब भी आपको आफ्टरनून लिखती तो आप मुझे करेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारे वैंकूवर में तो मॉर्निंग है अभी, तो गुड मॉर्निंग टू यू। मनु जी, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, आप सभी का, एंड वजाहत जो कि अलेक्सा पर सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Leica Radio
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर द स्टार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.
2: वेखो द स्टार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
6: एक सिंह दा पुत्ता दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी।
7: Lester Miller is back
8: and the stage is about to explode.

0: क्या बात है लता जी एंड किशोरदा, की आवाज़ें आपने सुनी। फिल्म का नाम था महबूबा। महबूबा 1976 में आई थी। और ये फिल्म रिलीज़ किस दिन हुई थी पता है आपको? ये रिलीज़ हुई थी आज ही के दिन इन 1976। शक्ति सामंत साहब ने बनाई थी एंड राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा और नासिर हुसैन ने इस फिल्म में काम किया था। राहुल देव बर्मन जी का संगीत था और आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे इस फिल्म के गीत। एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन, जैसे कहा कि गुलशन नंदा जी के नावल पर ये फिल्म बेस्ड थी और उस नावल का नाम था सिसकते सांस। गुलशन नंदा के बहुत से नावल्स पर बहुत सी फिल्में बनी हैं, लाइक कटी पतंग भी उनके ही नावल पर बेस्ड थी। राजेश खन्नाज आइडिया फॉर द सॉन्ग्स बिकॉज द स्टोरी स्पैन्स टू लाइफ टाइम्स। राजेश खन्ना रिपोर्टेडली वॉन्टेड द सॉन्ग्स इन द पास्ट लाइफ पोर्शन जो है वो संग बाय मन्ना डे साहब एंड प्रेजेंट लाइफ पोर्शन वो चाहते थे किशोरदा गाएं। एंड आइकॉनिक सॉन्ग इन टू वॉइसिस मेरे नैना सावन भादो, और ये गाना किशोरदा ने भी गाया, लता जी ने भी गाया और बोथ वर्जन्स बिकेम क्लासिक्स एंड वी आर स्टिल लिसन टू दीज बोथ सॉन्ग्स एंड लव दो सॉन्ग्स। पंजाबी फोक इंस्पिरेशन भी थी ये गाना जो आपने अभी अभी सुना। द मेलोडी ऑफ पर्वत के पीछे वॉज इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशनल पंजाबी बोलियाँ सॉन्ग साढ़े तन वेड़े वेरे विच, साढ़े तन वेड़े विच। ये गाना सुरिंदर कौर और प्रकाश कौर ने गाया था ओरिजिनली। और ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं इस फिल्म के साथ साथ, जैसे लाइक रियल पैलेसेस लोकेशंस चुनी गई थी और वहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। राजेश खन्ना की ये सिक्स्थ फिल्म थी इन लाइन विद शक्ति सामंत। और उन्होंने पहले कौन कौन सी फिल्मों में काम किया था क्या आपको याद है? शक्ति सामंत के साथ उन्होंने आराधना की थी। और कौन कौन सी फिल्में थी जल्दी जल्दी याद दिलाइए सरिता को, सरिता भुलक्कड़ है ना, भूल जाती है बड़ी जल्दी। सो एनीवे आराधना में उन्होंने काम किया था शक्ति सामंत जी के साथ। एंड इसके अलावा उन्होंने कौन सी फिल्म थी, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, देन अनुराग एंड अजनबी, और ये छठी फिल्म थी। अनुरोध में भी काम किया था एंड अलग अलग में भी। सो बहुत सी यादें हैं इन गीतों के साथ आपकी भी जुड़ी हुई। और दूसरा गीत जो पहला गीत सुनाया मैंने आपको यस बॉस फिल्म से, वो भी फिल्म इसी महीने यस 18 जुलाई यानी कल के दिन रिलीज़ हुई थी। क्योंकि कल बहुत सारे बर्थडेज थे, बर्थ एनिवर्सरीज थी, तो मैं कल नहीं बता सकी थी। लेकिन यस बॉस कल के दिन 18 जुलाई 1997 में रिलीज़ हुई थी। अज़ीज़ मिर्ज़ा साहब ने इसे डायरेक्ट किया था एंड शाहरुख खान, जूही चावला, आदित्य पंचोली की ज़बरदस्त भूमिकाएं थी। एंड फिल्म का संगीत दिया था जतिन ललित ने। और इस फिल्म को बहुत से अवार्ड्स मिले भी थे, नॉमिनेशंस भी हुई थी इस फिल्म के लिए। 43rd फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अभिजीत भट्टाचार्य को मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के लिए अवार्ड मिला था। एंड नॉमिनेशंस भी बहुत थी, शाहरुख खान बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस जूही चावला, बेस्ट विलन आदित्य पंचोली, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित एंड बेस्ट लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब फॉर चांद तारे तोड़ लाऊं, जो गीत मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल किया। उम्मीद करती हूँ गीत दोनों पसंद आए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी आज आपका एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड आपको दिला सकते हैं 128 रुपीज़ एंड 90 पैसेज। एंड आप ब्रांच में जाकर पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं एंड SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। TNC अप्लाइज।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: Right, भी कल का मैच था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, और जिसने इंग्लैंड को थर्ड प्लेस पर डाल दिया है एंड आज बड़ा मैच है, फाइनल मैच है सभी की। बहुत बिजी होंगे आप शाम को, लेकिन कान फिर भी रेडियो की तरफ रख सकते हैं। शाम 8 बजे शुरू हो रहा है ये मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच, और देखते हैं कि कौन किसकी जीत होती है, कौन फीफा का बड़ा सा ट्रॉफी लेकर जाता है। और ये बता दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स। कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk।
0: ओके, अगला गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म हीर राजा, 1970 की फिल्म जिसमें राजकुमार और प्रिया राजवंश थे। इस फिल्म के दो गीतों में से डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सरिता के लिए, तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, या तेरे कूचे में तेरा दीवाना, कौन सा गीत आपको सुनना है जल्दी से बताइएगा।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
3: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE12JU and 2A Rollout Hill, Lister, LE54UN.
4: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
5: Nazar se nazar.
4: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
7: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
8: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash & Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
9: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
10: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
9: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
10: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
9: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
10: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
9: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
10: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
1: ડાઉનલોડ ધ લાઇકા રેડિયો મોબાઈલ એપ, લિસન લાઈવ એન્ડ લિસન બેક ટુ યોર ફેવરિટ શોઝ. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
11: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बहुत से मेरे साथियों ने इसी गीत को वोट्स दिया और कहा कि ये गीत जरूर प्ले होना चाहिए. थैंक यू एवर सो मच. इनफैक्ट सिर्फ एक वोट था फॉर अदर सॉन्ग एंड दैट वाज किरण. थैंक यू आपका भी. फिर किसी रोज आपकी पसंद को भी पूरा करूंगी. इंतशाह, मानसी जी, रितेश जी, हरप्रीत, मिसेस शेख, निर्मल, कीरत जी, प्रज्ञा जी, तोची जी, अजी, निक, भावे एंड दिव्या जी, निखिल कांत इन वोकिंगम, हरप्रीत एंड नीलमानी. नीलमानी, आई थिंक आपने मुझे पहली दफ़ा मैसेज लिखकर भेजा है. थैंक यू सो मच. आपको भी गीत सारे के सारे पसंद आ रहे हैं ये जानकर बहुत अच्छा लगता है. बहुत से नाम है जो मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वक्त है ना तेज़ी के साथ दौड़ता है, लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर देती हूँ आपके व्हाट्सएप का. रानी जी, थैंक यू सो मच आपका भी. चलिए भाई, बता दें कि ये गाना आप तक पहुँचाया था डेरी वैली वालों ने. और इस गीत की खासियत ये थी कि इस गीत को लिखा कैफी आजमी साहब ने और मदन मोहन साहब का संगीत था. आप सभी जानते हैं हीर राजा फिल्म का गीत क्यों शामिल किया, क्योंकि ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज हुई थी और 19th of July in 1970. राजकुमार प्रिया राजवंश ने इस फिल्म में काम किया था. चेतन आनंद साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और जैसा कि मैंने कहा मदन मोहन जी का संगीत और कैफी आजमी साहब की कलम से लिखे गए थे ये सारे की.
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds.

0: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ गीत कंपोज किया था शंकर जयकिशन ने। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 17th यानी फ्राइडे को हुई थी, 17th of July 1969 में। शमी कपूर और बबीता ने इस फिल्म में काम किया था और प्रमोद चक्रवर्ती ने इसे डायरेक्ट किया था। और भी बहुत सी फिल्में हैं जो इसी हफ्ते, जो लास्ट वीक गया है उसी हफ्ते हुई हैं रिलीज़, लाइक दिल है कि मानता नहीं, देन जुर्म वॉज ऑन 13th of July as well, 14th of July को फिल्म रिलीज हुई थी जवानी दीवानी, उसका गीत मैंने किया हुआ है, क्यों देखते हैं कि आपको पसंद आता है या नहीं। लेकिन आइए जरा अब ये जान लें।
1: Like Extra Podcast Update।
0: राइट, इस दफा का टाइटल है लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर एंड कैच द एपिक कन्वर्सेशन विद डॉनी ब्रास्को, बाली ब्रह्म भट्ट, एनिका, रूबी रजा, रेडियो वाले एंड अनीसा नासिर फ्रॉम द सेक्रीफाइसेस प्रेजेंटर्स मेक फॉर देयर करियर टू द अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस अलोंग द वे। और इंटरेस्टिंग होगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज़ हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है
2: लाइका रेडियो। The Janan and J.Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J.Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
3: Leicester Miller is back.
4: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performance.

0: जवानी दीवानी से चुना था मैंने इस गीत को, और ये फिल्म भी जुलाई के महीने में ही रिलीज हुई, 14th जुलाई 1972 को आई थी ये फिल्म, रिलीज हुई थी। जया बच्चन एंड रणधीर कपूर ने इस फिल्म में काम किया था, नरेंद्र बेदी जी ने डायरेक्ट किया था और उन्हीं की स्टोरी थी। आर डी बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब ने लिखा था इस गीत को। आई होप यू लाइक्ड इट। राइट, थोड़ी सी करेक्शन कि मैंने जो गीत प्ले किया तुमसे अच्छा कौन है, दैट वाज फ्रॉम द फिल्म जानवर, जस्ट बिकॉज द नेम ऑफ द फिल्म इज सेम, तुमसे अच्छा कौन है, तो आई जस्ट कैरीड इट ऑन कि मैं वही उसी फिल्म का गीत है इसलिए मैंने प्रोग्राम में शामिल कर दिया। लेकिन करेक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड निखिल कांत, आपने वोकिंगम से मुझे मैसेज लिखा कि सहिता जी वो तो जानवर का गाना था। हाँ, गलती से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, या मिस्टेक से कभी कभी गलती हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, और वो गीत आ रहा है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का, जिसका आपको शायद इंतजार हो। लेकिन पहले
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: राइट, वे एक पाउंड के बदले आज आपको इंडियन रुपीस मिल सकते हैं 129 रुपीस एंड 84 पैसा, पाकिस्तानी रुपीस 373.71, श्रीलंकन रुपीस 452.4 एंड बांग्लादेशी टका 166.7, अफगानिज 88.64 एंड US डॉलर्स 1.34।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में है 95 pounds and 96 pence में एक ग्राम सोना।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: ये है लाइका रेडियो।
0: रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आप सुनने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि भी क्रिकेट आज मैच देख रहे हैं ना, सबकी आंखें लगी हुई हैं टेलीविज़न पर, तो कान तो इधर है ना, मेरी तरफ होने चाहिए। वेल, इस वक्त मैं लेटेस्ट स्कोर आपको जल्दी से बता देती हूँ। 196 for 1 हो गया इंडिया का स्कोर, एंड दे नीड 192 runs फ्रॉम 19.4 overs टू विन द मैच। वैसे इंग्लैंड बहुत अच्छा खेले और उन्होंने 387 का इन्हें टारगेट दिया। चलिए अब इस गीत को सुन लें।

0: भाई सभी वाइफ्स की तरफ से हस्बैंड्स के नाम, हस्बैंड्स की तरफ से वाइफ्स के नाम इस गीत को मैं करती हूँ। और हम चाहते हैं इसी तरह से आपका प्यार, आपका संबंध इसी तरह से बना रहे। खास तौर पर हितेश जी, यू आर नॉट फीलिंग टू गुड, तो संध्या जी की तरफ से मैंने किया है इस गीत को आपके नाम। उम्मीद करती हूँ आपने इसे अच्छी तरह से इंजॉय किया।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0780-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rift Go Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. Click riffgotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
5: Citybound Travel proudly presents Yat Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Hi.

0: Back-to-back hits across the Lyca Radio Network.
1: Another beautiful song, जो हमें 6 बजे के समाचारों तक पहुंचाएगा. समाचारों के उस पार मैं सरिता आप ही का इंतजार करूंगी, जो मेरे साथ ही अभी जुड़े हैं. यस, अभी सुनना शुरू किया है. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एंड काइंड मैसेजेस. मुकद्दर

0: होता है,
1: प्यार होता है और क्या होता है, जब चोरी चोरी आंखें मिलती हैं तो ऐसा ही होता है ना। किशोर दा की आवाज में पाप की दुनिया से ये गीत आपने सुना, एंड ये 1988 में फिल्म आई थी। और आज के प्रोग्राम के थर्ड आवर का पहला गीत मैंने करीब फिल्म से चुना था। इस फिल्म के गाने अच्छे थे और इस फिल्म के जरिए एक नई आवाज हमें सुनने को मिली थी। शी वॉज इन इंडियन आइडल और सम रियलिटी शो, संजीवनी जी ने गाया था इस गीत को और अनु मलिक का संगीत था। एंड करीब में बॉबी देओल थे और हीरोइन भी नई थी जिनका नाम था शबाना रजा। एंड विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, राहत इंदूरी ने लिखे थे सारे गीत। बड़े क्यूट गाने थे इस फिल्म के, बड़े सिंपल से। सो मुझे उम्मीद है कि मेरा चुना हुआ गीत आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और अब भी आर्टिस्ट ऑफ द वीक में रवि जी के गीत दो हफ्ते से आप सुन रहे हैं और बहुत से अच्छे अच्छे गीत आप सुन चुके हैं। जो मैंने चुने हैं गीत, एक गीत चुनना था पर मैंने दो गाने चुन लिए हैं, तो मुझे दोनों गीत पसंद हैं। तो एक बन रहा है आर्टिस्ट ऑफ द वीक के जरिए आप सुनेंगे उस गीत को और दूसरा गीत आप तक पहुंचाएंगे डेरी वैली वाले। लेकिन उससे पहले भी बहुत से काम और करने हैं, जैसे कि
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Right, we aaj aapka one British sterling pound can get you 120 28 rupees and 90 paisas, and you can transfer the money, exchange the money in the branch aur iske ilawa online aur SBI YONO mobile app ke zariye aap transfer kar sakte hain. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
4: Leica Radio.
3: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
1: रेकला वाले आपको ये कहना चाह रहे हैं कि 15 मिनट फ्री लीगल एडवाइस अगर आप चाहते हैं किसी भी मौजू पर, तो आप जस्ट मेंशन कीजिए लाइका और आपको फ्री एडवाइस मिलेगी। और अब मैं बता दूं आपको कि आप बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 8 बजे और टेलीविज़न ऑन हो और मैच देखा जाए। यस, आज बहुत बड़ा मैच है, संडे 19 जुलाई फाइनल हो रहा है फीफा का, अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में है ये जंग। देखते हैं किसकी विजय होती है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं तो लिखकर भेज सकते हैं, और जो मेरे साथी बराबर मैसेजेस लिख रहे हैं उनका थैंक यू।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Sarita Summer.

0: ऊंची गली से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं, आई लव दिस सॉन्ग। और इसे आशा जी ने पूरी फीलिंग्स के साथ गाया, बहुत प्यारा गीत था, रवि जी का संगीत। फिल्म का नाम आज और कल, 1963 में आई थी ये फिल्म। और डेरी वैली वाले कौन सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं?
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Film ka naam hai Shehnai. Aasha Bhosle and Mohammad Rafi saab ki awaazein aap sunne ja rahe hain. Bahut khoobsurat geet hai. ऐसे गीत अब आजकल सुनने को नहीं मिलते हैं। पहचान गए हैं ना कौन सा गीत है? सदियों पुरानी। जिन मेरे साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये गीत उन सब के नाम। एक बार फिर से रवि जी का संगीत।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Laika Radio. और लाइका गोल्ड पर सरिता अब आपको बताने जा रही है. लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू बी द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी, द स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द आइकॉनिक रॉयल एल्बर्ट हॉल एंड इज नाउ कमिंग टू ओवर वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर. क्रिएटेड बाय नितिन पालन MBE, फाउंडर ऑफ सनातन इवेंट्स एंड फीचरिंग स्टनिंग कोरियोग्राफी बाय द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम, दिस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन रामायण की टाइमलेस स्टोरी को 4 पावरफुल चैप्टर्स एज स्पेशली कंपोज्ड 7 सॉन्ग्स ट्रैक साउंड ट्रैक्स होंगे और अ ट्रूली इंटरनेशनल कास्ट के साथ स्टेज पर लेकर आ रहे हैं. स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्री शो है, शाम 5 बजे से 6:45 बजे तक चलेगा और मेन परफॉर्मेंस 6:15 से 9:30 PM तक चलेगी. तो देर किस बात की है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस मैजिकल सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए और बुक योर टिकट्स टुडे एट www.diwalistory.com.
0: This is Laika Radio across the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: जी हाँ, अभी आ रहे हैं. ये काम भी कर लें पहले, फिर गाना आ रहे. साउथ ऑल ट्रैवल इज प्लीज टू अनाउंस कि अब बहुत सारी दुबई की डील्स हैं उनके पास और आप अगर बुक करना चाहते हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल का नाम याद रखें और उनका नंबर 02085748410@allprotected.
0: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.

Another beautiful song by Asha Bhosle, and इसे भी कंपोज किया म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने. फिल्म का नाम था दो बदन. आशा पारी की एक्टिंग, मनोज कुमार की एक्टिंग एंड प्राण की एक्टिंग, सभी की एक्टिंग बहुत खूबसूरत है. एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स.

0: कभी वैसे भी अगर जाए ना आने वाला तो प्यार समझ कब आता है, जो आता है उसे जाना ही पड़ता है और मेरे भी जाने का वक्त है। और जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह। सैंडी शाह के साथ आप विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सुन पाते हैं एवरी वीकेंड पर, सैटरडे एंड संडे। और उनके जाने के बाद आप गोल्डन नाइट्स में, ओवरनाइट सर्विस है हमारी गोल्ड नाइट्स, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीत होते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, नो प्रेजेंटर्स देयर, तो आप आराम से म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही मैं बता दूं कि मेरे जाने के बाद सैंडी शाह इधर आ रहे हैं लाइका गोल्ड पर, एंड मैनचेस्टर रेडियो पर आप सुन पाएंगे देसी बीट्स विद जैसी, और जैसी के साथ, और लाइका रेडियो पर आप अब सुन पाएंगे कि नहीं, नीरज इज कमिंग एट 7 o'clock। अभी तक वहाँ थी कौन, आपकी प्रेजेंटर एनिका। वेल, मेरे वो साथी जो बड़े प्यार से मुझे पूरे 3 घंटे तक मैसेजेस लिखते रहे हैं, बताते रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह से मेरा साथ हमेशा देते रहें, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ होते हैं, तो समय भी जल्दी से बीतता है एंड पता रहता है कि मेरी पसंद आपकी पसंद बन रही है। आज बहुत से गीत मैंने रवि जी के कंपोज किए हुए सुनाए, आपको कुछ उन फिल्मों के गीत सुनवाए जो आज के दिन रिलीज हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप बड़े प्यार से हमेशा एवरी वीकेंड मेरा साथ दीजिएगा। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, थैंक यू।
1: लिस्ट अप, स्टॉक अप एंड सेव एट फाल्कन कैश एंड कैरी। फाल्कन चक्की आटा 10 kg 749, लैला मीडियम आटा 10 kg जस्ट 399, दिशा एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस 20 kg 24.99, हीरा बटर घी 2 kg 10.99 एंड फाल्कन पनीर बॉक्स 899। गेट फाल्कन केसर मैंगो पल्प फॉर 149, टाटा सॉल्ट फॉर 69p, किसान हॉट एंड स्पाइसी सॉस फॉर 99p एंड 2 फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg फॉर 399, मिडो योगर्ट 10 kg 899, करेला और लॉन्ग दूधी 299 पर किलो। ऑफर्स वैलिड फ्रॉम 6th जुलाई टू 2nd अगस्त एट फाल्कन कैश एंड कैरी, 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट, लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल, लिस्टर LE54UN।
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
3: Nazar se nazar.
2: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: The Janan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
9: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
10: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
11: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. Click RifkoTheatre.com for more info. And with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

0: से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: Riker Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-393-5757. Greens by Danu. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल आटो Protected.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: Back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist
4: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
5: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
6: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
7: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: Bollywood romantic hits throughout the night. This is The Love Sound.

0: Biker Radio.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: For travel, at all protected.
4: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
0: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.